0: जी हाँ दोस्तों, फिर 11 तरीक नू सेंसस दा फॉर्म भरन दे लई तैयार हो। वैसे ते सेंसस हर साल हर 5 साल बाद आंदा है, लेकिन इस बार दे सेंसस विच बहुत सारे अजिहे सवाल ने जो कि पहली बार पूछे जा रहे ने। की कुछ नवा हो रहा है इस साल दे सेंसस विच, आओ जानदे हां सिडनी तो साडे साथी MP सिंह तो।
1: हर 5 साल बाद ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी ABS ऑस्ट्रेलिया विच रह रहे हर व्यक्ति अते हर घर की गिनती करता है। सेंसस राही ऑस्ट्रेलिया की उस समय की पूरी तस्वीर सामने आती है। इस विच देश विच मौजूदा लोगों के नाल छुट्टियां मनाउन आए लोग, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अते टेंपरेरी वीजा होल्डर भी शामिल होंदे हन। इस साल सेंसस मंगलवार 11 अगस्त नूं होवेगा। डॉक्टर लिज एलन ANU सेंटर फॉर सोशल पॉलिसी रिसर्च विच डेमोग्राफर हन।
2: The census is much like a family photograph at one point in time. It captures a still of who we are, how we live at a point of time in Australia's history. The census is vitally important for a whole range of things, from essential services like healthcare and education to roads to sewage, to just information about us. The census is the only way that we can understand the socioeconomic circumstances of our lives in the cities, in the regions, all the way down to our suburbs.
1: ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ